सौ सौ गोते खाइए गया गया गल मुकदी नाही भावे सौ सौ पंड पढ़ाइए बुल्ले शाह गल